0: ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: अर्जेंटीना जुम्मे के रोज फॉकलैंड जज़ायर पर गैर मजाज हाइड्रोकार्बन तलाश इस्तेहसाल में मुलव्वस शुबहात के बायस 45 अफराद कंपनियों के खिलाफ पाबंदियों के इकदाम शुरू किए, जिन्हें ब्यूनस आयरिस इस्लास मालवीनास कहता है। सदर हाफिज मेले के दफ्तर ने ऐलान किया, यह कानूनी इकदाम न सिर्फ फाल तेल फर्मों को बल्कि उनके शेयर होल्डर्स उन कंपनियों को भी निशाना बना रहे हैं जो इन ऑपरेशन के लिए खदमात फ्राहम कर रही हैं। दफ्तर ने कहा, जो लोग अर्जेंटीनी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करके मुनाफा हासिल करने की कोशिश करेंगे, उन्हें अर्जेंटाइन रियासत में कवानीन का सामना करना पड़ेगा। हुकूमत ने फॉकलैंड जज़ायर, साउथ जॉर्जिया, साउथ सैंडविच जज़ायर के मुतल का समुद्री जज़ीरा इलाकों पर अपने दावे की दोबारा तस्दीक की। कहा, यह तारीखी और कानूनी तौर पर अर्जेंटाइनी है, इस बारे में कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। मैंने पहले खबरदार किया था, सिलायून आयल प्रोजेक्ट जो फॉकलैंड का करीब एक अहम ऑफशोर हाइड्रोकार्बन मनसूबा है, बरतानवी कंपनी रॉक हॉपर एक्सप्लोरेशन इसराइल की नैनीताल पेट्रोलियम चलाती है, फौरी खतरा है। उन्होंने कहा, अगर फौरी कार्रवाई न की गई तो गैर मुल्की इदारे हमारे समंदर के नीचे मौजूद तेल के जहाय गस्त कर लेंगे और अपने कब्जे को मजीद गहरा करेंगे। लंदन ने पाबंदियों को दाखिली सियासत करार देकर मुस्तरद किया और जजायर के लिए अपनी वाबस्तगी का इरादा किया। लुबनान में इसराइली हमलों में 3 अफराद मारे गए। लुबनान की वजारत सेहत के मुताबिक जनूबी मशरकी लुबनान पर इसराइली हमलों में कम अज कम 3 अफराद हलाक और 23 जख्मी हो गए। इसराइल ने कहा, यह हमले हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले के बाद किए गए जिसमें इसराइली फौजियों को निशाना बनाया गया था। इस इल्जाम का हिजबुल्लाह ने कोई जवाब नहीं दिया। लुबनानी हुकाम का कहना है, जून से लेकर अब तक इसराइल की जानब से अमेरिका के साथ जंग बंदी की 5,000 से ज्यादा बार खिलाफ वर्जी की जा चुकी है। इसराइल पुरतशद्दत कार्रवाई के नतीजे में गजा मकबूजा मकबे किनारे में फलस्तीनियों की हलाकतें हुई हैं। इसराइल हमायत याफ्ता मलेशिया ग्रुप ने जनूबी गजा में एक फलस्तीनी को हलाक कर दिया। खान यूनुस में इसराइली फौज की फायरिंग से 2 कम सिम बच्चियों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। ये वाकयात इसराइल की जान से जंगबंदी की रोजाना की खिलाफ वर्जियों को नुमाया करते हैं जो अक्टूबर 225 से नाफजुल अम है। इसराइली फोर्सेस ने मकबूजा मशरकी यरूशलम में दमिश्क गेट के करीब एक फलस्तीनी शख्स को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। शख्स ने मुबैना तौर पर एक अफसर को चाकू घोंपने की कोशिश की थी। और चीन नेपाल में सैलाब से मरने वालों की तादाद 1300 से तजावज कर चुकी है। चीन नेपाल सरहद पर सैलाब से कम अज कम 1,308 अफराद हलाक हुए हैं। बर्फानी पहाड़ों के गिरने के बाद 5,000 से ज्यादा लोग ताहाल लापता हैं। 800 से ज्यादा गैर मुल्की जिनमें पैदल सफर करने वाले, तिब्बत के पहाड़ कैलाश के सफर पर जाने वाले जायरीन भी शामिल हैं, भी बेहिसाब हैं। इसके साथ ही तुर्की से खबरें खत्म हुई।

क्या आप जानते हैं कि जिस ट्रेड मिल को आप हर रोज जिम में इस्तेमाल करते हैं उसकी तारीख क्या है? 1800 की दिहाई में कैदी रोजाना 6 घंटे इन मशीनों पर गुजारते थे। वो माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई जितना सफर रोजाना पैदल तय करते। एक तशद्दुद के आले से लेकर फिटनेस मशीन बनने तक ट्रेडमिल की स्याह तारीख अब शुरू होती है। ट्रेडमिल खास तौर पर खेल और फिटनेस के लिए लाजमी मशीन है। आजकल जो मशीन जिमों की जीनत बनी हुई है, माजी में वो कैदियों को सजा देने के लिए इस्तेमाल होती थी। आज हम जानान बिलगिजी और नाज इरम उस्तुंदा के इस मौजू पर बात करेंगे जो उन्होंने TRT न्यूज के लिए लिखा है। तो आइए सुनते हैं ट्रेडमिल की ये दिलचस्प कहानी। ट्रेडमिल्स को 1800 की दिहाई में बरतानवी कैदियों को सजा देने के लिए बनाया गया था। उस दौर में बरतानवी जेलों का निज़ाम इंतहाई अबतर हालत में था। फांसी और जिलावतनी पसंदीदा सजाएं थीं। कैदियों को इंतहाई गंदे खुलियों यानी काल कोठरियों में बंद करके दुनिया से अलग थलग रखा जाता था। इस सूरत हाल को बदलने के लिए कुछ रजाकारों ने मदद करने की कोशिश की। इसके नतीजे में ट्रेडमिल जैसी कैदियों की इसलाह के नए तरीके सामने आए। ट्रेडमिल को हमारे जिंदगियों में 1818 में एक बरतानवी इंजीनियर सर विलियम क्यूबिट ने मुतारिफ करवाया। ताहम ट्रेडमिल बनाने का मकसद सेहतमंद जिंदगी गुजारना या चर्बी पिघलाना नहीं था। ट्रेडमिल को एक तशद्दुद के आले के तौर पर डिजाइन किया गया था। जब क्यूबिट ने सेंट एडमंड्स जेल में कैदियों को बेकार और सुस्त बैठे देखा तो उनके जहन में एक दिलचस्प ख्याल आया। उन कैदियों की जिस्मानी ताकत को इस्तेमाल में लाया जा सकता था और उनसे ज्यादा सख्त सजा का काम लिया जा सकता था। चुनांचे क्यूबिट ने पहली ट्रेडमिल डिजाइन की। पहली ट्रेडमिल दरअसल एक बहुत बड़े गोल घूमने वाले पेज की तरह थी जिस पर एक दर्जन के करीब कैदी एक साथ दौड़कर उसे घुमाते थे। ये सीधा दौड़ने के बजाय मुसलसल सीढ़ियां चढ़ने जैसा था। कैदियों के लिए मुसलसल हरकत करना जरूरी था क्योंकि अगर वो रुकते तो नीचे गिर जाते। उनकी इस हरकत से गंदम पीसने, पानी खींचने या कानों में ताजा हवा पहुंचाने के लिए जरूरी तवानाई पैदा होती थी। कैदियों के अलावा हर कोई इससे फायदा उठा रहा था। सरासर अजाब। इस इजाद के बाद अगले 10 सालों में 50 बरतानवी और इतनी ही तादाद में अमरीकी जेलों ने ट्रेडमिल का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उस दौर के बहुत से लोगों ने ट्रेडमिल को जेल के बेकार माहौल को एक बेहतरीन हल समझा। 1875 में एक मकामी इलाके ने ट्रेडमिल को जेल के नज्म व ज़ब्त में एक बड़ी तरक्की करार दिया, जबकि जेल डिसिप्लिन इम्प्रूवमेंट सोसाइटी ने इसे एक अबरतनाक सजा का नाम दिया। यह समझा जाता था कि जो कोई भी एक ट्रेडमिल की सजा भुगत लेगा वो दोबारा कभी कोई जुर्म नहीं करेगा। वो रोजाना माउंट एवरेस्ट की आधी ऊंचाई जितना चढ़ते थे। अंदाजों के मुताबिक कैदी रोजाना 6 घंटे इन ट्रेडमिल्स पर गुजारते थे। ये औसतन 1500 से 4200 मीटर की ऊंचाई चढ़ने के बराबर है। 4267 मीटर की बुलंदी दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट का आधा रास्ता है। क्यूबिट का ये डिजाइन बरतानवी सल्तनत की सरहदों को पार करके अमरीका में भी तेजी से फैल गया। शदीद मशक्कत के मिलाप ने ज्यादातर कैदियों को माजूर और जख्मी करना शुरू कर दिया। ट्रेडमिल 19वीं सदी की जेलों के बुरे हालात की अलामत बनकर रह गई। इसके नतीजे में 1898 में ट्रेडमिल के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई।

1911 में अमेरिका में पेटेंट होने वाले ट्रेडमिल का तिब्बी इस्तेमाल बहुत बाद में यानी 1952 में डॉक्टर रॉबर्ट ब्रूस ने अपने एक साथी पर तजुर्बात करने के बाद शुरू किया। डॉक्टर ब्रूस के इन तजुर्बात ने इस टेस्ट की बुनियाद रखी जिसे आज ब्रूस कहा जाता है, जिससे ये मालूम किया जाता है कि दिल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं। 1960 और 1970 की दिहाइयों में कार्डियो वर्जिश के मकबूल होने के साथ ही ट्रेडमिल्स पहले जिमों में और फिर हमारे घरों में दाखिल हुई। इस तरह हैरत अंगेज और तंज आमेज तौर पर एक जमाने का तशद्दुद का आला आज सेहतमंद जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो क्या आप जानते थे कि आज जिम में इस्तेमाल होने वाले ट्रेडमिल के पीछे इतनी तारीख छुपी हुई है? हमारे अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा।